0: ओ भाई बीटी मत दे, लाइन दे।
1: अंडा नॉनवेज नहीं होता और बियर दारू नहीं होती।
2: Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Your home for culture, community and unity here on CJMR 1320.

जब तू साथ नहीं होती तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

0: अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियाँ फेंकती है।
1: पिंड चोटियाँ चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहे नूरे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

लावल जाओ। आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं आनी। कुछ तेरिया ने, कुछ मेरिया ने, तेरा मिलना तेरा विछड़ना। तू कदे परछावें तो नेड़े, तू कदे सब तो दूर। तेरा हासा तेरा रोना, ते कदे कदे एकदम चुप होना। सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नू जीना सिखिया, निक्किया चीजा च खुश होना सिखिया, उच्ची उच्ची हसना सिखिया, दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया। हां खुशी है मैनू तो जिंदगी किदा जीनी है ए दसिया, पर अफसोस तेरे बिना किदा जीनी है किते ए नहीं दसिया। गल हुण संघनी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है, दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है। ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया, जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या। विद माई फर्स्ट ईपी एडिक्शन।

तेरा चले तो ले ले पूरा दिन हो तैयार तो घंटे न गिन मैं हूँ यही एट योर सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ जब भी होती लो तो मेरा नंबर करे डाल मैं हूँ तेरे साथ साथ तू है मेरे संग संग तेरे साथ टाइम की खबर न लगे किसी भी चीज में कसर न लगे मांगू दुआ यही नजर न लगे बेबी ऐसे है मत कर हमें क्या मत तुम मुझको मिली है ये है मेरी किस्मत।

0: community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

0: आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: हाँ तो दोस्तों गल ऐसा है कि भाई मैं रात नूं बैठा सीगा मूड रोवल देखी जाते ही ते उधर जो मैं चानू नूं देखिया ते मैं चानू नूं देखिया तो उन्हें मैं की गल्लां कीतियां जिवें मैनूं ऐ लगे सुन के।

घड़ी ना दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गए।

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में।

0: अरदास हो तुम मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.